मन तन तेरा, तन भी तेरा, तू ठाकुर स्वामी प्रभ मेरा, जियो पिंड सब रास्त मारी।

जो प्यार पिता देवेगा पड़ोसी नहीं दे सकता, जो स्वाद अंब विचों आवेगा अंबली विचों नहीं। ऐ गुरु के सिख, जो पुकार तेरे ते गुरु कर सकदा, संसार दा होर कोई जीव मात्र नहीं कर सकदा, ना मां ना बाप ना भैन ना भरा ना कोई रिश्तेदार। गुरु दा उपकार बहुत वड्डा है। भाई साहब कहंदे ने सारा संसार ढूंढ के आ, लहंदे तो लैके चढ़दे तो लैके लहंदे तक नवा खंडा विच घूम के आ, गुरु वर्गा

राग गौड़ी ग्वारेरी विच ऋषभ कोमल मध्यम तीबर अते बाकी सुर शुद्ध लगते हैं। इस दे आरोह विच ऋषभ पंचम अते अवरोह विच पंचम वर्जित है। इस दी जाति औड़व शाड़व वादी गंधार संवादी धैवत अते समा शाम है। इस राग विच गुरसिख हर बोलो मेरे भाई शब्द दा कीर्तन कर रहे हैं भाई अवतार सिंह।

साहिब सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह दा जिन्हां ने यह हुक्म सुनिया नंदेड सचखंड साहिब पातशाह दी हजूरी विच सदके जदों तख्त चवर दे मालिक साहिब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब नूं थापिया गया इत्थे प्रेरणा नहीं है। प्रेरणा ते हुक्म दे अंदर बड़ा फर्क है। प्रेरणा किसे नूं कीती जाए वह प्रेरिया जाए ना प्रेरिया जाए उहदी मर्जी। जदों हुक्म किसे नूं सुनाया जाए जां तां हुक्म मन के प्रवान हो जाओ ते जां हुक्म अदूली करके गुनाहगारां दी कैटागरी शामिल हो जाए। हुक्म दा अर्थ दूजा नहीं निकलदा है, या वह मनिया जांदा है ते जां उसकी अवज्ञा हुंदी है। अवज्ञा करन वाले नूं जो सजा हुंदी है यह सारा संसार जानदा। हुक्म लॉ एंड आर्डर नूं कोई ना मन्ने ता जो उसका हशर हुंदा है, जो उहदा वर्तारा वरदा है, किसी भी अग्ञानी तो अग्ञानी पुरश तो भी भुला नहीं। कलगीधर पातशाह का यह हुक्म है सब सीखन को हुक्म है कि गुरु मानियो ग्रंथ। यह हुक्म कलगीधर का सुन के ओहदा कहाउण वाला कोई गुरु का सिख किसी देह दे अंदर गुरु का विश्वास रखी तुरिया मिले ऐसी कलगी धर दे हुक्म की अदूली करने वाला अपने आप नूं सिख किवें इखला सकता है। उहदा तां इह हुक्म है गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरां की दे जो प्रभ को मिलवो चाहे खोज इन्हीं में दे। जे गल्लां करनी है, जे बातां करनी है, जे दीदार करना है तो बह जाओ हजूरी विच, सज जाओ आके इशनान करके। जंदी यह साहब की बख्शिश है भी जदों गल्लां करोगे तुहाडी रसना ते आप ही बोल बोल तुहानू सुनाई जाऊगी, ऐं कर आ ना कर आ मार्ग अख्तियार कर, यह उत्तम है, यह प्रमाणिक है, यह ना प्रमाणिक है, तुहाडी रसना ते बैठ के तुहानू समझाई जाओ। ऐसा होर चतर दुनिया का गुरु कौन हो सकता जिहड़ा तुहाडी रसना नूं वरत के आप ही तुहानू कही जाए, जंदी बोलण वेले तुहानू ही गुरु बना देवे। कैसा विचित्र साहब सतगुरु का एक करिश्मा है ते जिन्हें भी प्रभु नूं खोजना है ते इहदे विच समाया है। ते राह दसेगा गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दसणगे भी गुरु अकाल पुरख की प्राप्ति का मार्ग की है, आपे दसणगे जो गुरु सतगुरु का जो सिख का आपे बोलणगे। जिहड़े कहिंदे ने इह बोलदा नहीं इह सुनदा नहीं ते मैं समझा भी रब ने संसारक कन्न तां उहनां नूं दित्ते पर गुरु ग्रंथ साहिब बोलदा सुनने वाले कन्न नहीं उन्हां नूं दित्ते। नेत्र तां दित्ते पर साहिबां दी दसे सतगुणां दी जोत वेखण वाले नैण नहीं दित्ते। सुन के अमल करन वाली गुरु ग्रंथ साहिब दा ज्ञान करवाउण वाली शब्दावली सुनदा उन्हां नूं संसारक तौर ते तां इंदरा करन बख्शिया, पर साहिब ने गुरु ग्रंथ साहिब दा उपदेश सुनण लई नहीं दित्ता। इस लई सब सिखन को हुक्म है कि आओ टेको मथा ते गुरु मानियो ग्रंथ। आओ बीबिया तो शब्द सरवण कर लो ते साहिब सतगुरु पातशाह दी मेहर दा सदका जी चितता करदा नहीं पर बदे रुदे बाबा जी दी क्योंकि सेहत मैं समझदा भी गुरमुख भुल जांदे ने अपना आपा शरीर दा। जे हरजस ना हुंदा होवे ते संसार दीआं गल्लां बातां हुण फिर भावें शरीर दे विच उहनां दी सुता आ जाए ते महसूस करन वी सानू कुछ खेद है, पर जे शरीर दे विचों शब्द दी टंकार दे नाल कोई गुरमुख सुना के गुरु का कीर्तन ते गुरमुख गुरसिख महापुरख दी आत्मा नूं उहदे असली टिकाणे ते लै जाए उहनूं शरीरक कष्ट भुल जांदे ने। सो साहिब दी बख्शिश है, मेरी तां इह अरदास है गुरमुख आत्मा नूं सतगुरु सदा मेरी आजु ते अरोगता बख्शे तां जो असी संगत करके दीदार करके इन्हां दी कमाई दा करिश्मा वेख के कदे साडे मूर्खां दी भी सुरत इस पासे नूं पलटे ते असी भी कुछ अपना परमार्थ दा धन पल्ले बन के जिस मार्ग दे उत्ते हर एक ने समय समय अपनी वारी सिर तुरना है असी भी अपनी वारी सिर तुरन तो पहला कुछ ना कुछ पूंजी भी हाज लईए ते जिहड़ी सानू उत्थे कम आ सके। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

तेरी कुदरत तू ही जाने और ना दूजा जाने, तेरी कुदरत तू ही जाने और ना दूजा जाने, जिसनों कृपा करे मेरे प्यारे सोई तुझे पछाने, तेरे आ भक्तों को बलिहारा खान सुहावा सदा प्रभ तेरा, रंग तेरे अपारा रंग तेरे अपारा, खिन में और खिने में औरा अचरज।

पास जन अर्थ अनेकान अनेकाय सज्जन लोड़वंद पुरुष दाता जिन्हे दानी पुरुष होंगे उन्हें पास जाते हैं एक और दानी पुरुष उन्होंने उसी उस तरह की माया मिलता है जिस तरह का उचारता है। तो इसी तरह भाई साहब दसते हैं कैसे गुरसिख आवत है अनेक कैसे गुरसर।

पिता माता धरत महत दिवस रात दुर्दाई दाया खेल सगल जगत चंगिया बुरिया माचे धर्म अधूरे करमिया को अपनी

वाजे पंच शब्द तित घर सुभागे, घर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कुंटक मारिया।

सतगुरु सच्चे पातशाह आप जी के चरण कमलों पर नमस्कार। सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज श्री राग महला पहला का यह शब्द इस दे विच जो विचार पेश कर रहे हैं कि ऐ स्त्री ऐ जीव स्त्री जब तेरा तिर ही प्रसन्न नहीं है तो श्रृंगार का की अर्थ होया, श्रृंगार का की मतलब है? जब तिर ही नहीं, तिर वाली ही नहीं तो तेरे श्रृंगारा का की मायना? श्रृंगार ते तिर दे नाल ही सुंदर लगते हैं, बिना फिर तो श्रृंगार करने वाली औरत नू कहिंदे हन दर घर टोई नाल है। उसनू ना दर घर दे विच किते भी कोई टोई नहीं हुंदी, दरगाह झूठ फुहार अते दरगाह दे विच कोई झूठी हुंदी है क्योंकि उसने किस लई श्रृंगार किया अते ओ खुआर हुंदी। आओ अज इस कीर्तन नू पिछले कीर्तना दी लड़ी दे नाल जोड़िए। जब तेरा अंदर ही गलिया पिया है, सब गुण तेरे गल चुके हैं, अंदर गलिया पिया है और उपरों तू श्रृंगार कर दी, तेरे सारे ही गुण गल गए हैं, सारे तेरे गुण गल गए हैं, फिर तो दूर जान नाल, फिर तो दूर जान नाल मंदिर दे विच भगवान होवे, मंदिर दे विच अगर भगवान ही नहीं रहा तो फिर मंदिर कादा रह गया, एक सुन्नी इमारत रह गई। तू उस अकाल पुरख वाहिगुरु की पत्नी सी, औरत सी, एकाया, जब तू उस नालों ही टूट गई फिर तू सुहागण किस तरह रह गई? फिर तू सुहागण ना रही, फिर तेरा दर्जा सब तो उत्तम ना रहा। अते उस फिर तो वाहिगुरु तो अकाल पुरख तो आत्मा तो दूर चली जान दे नाल तेरे सारे ही गुण गल गए हैं। असि सुनिया सी ना, हर बिसरत तेरे गुण गले। जदों तेरे सारे ही गुण ही गल चुके हैं, अंदर टोटल रॉटन हो चुका है, तो तेरे बाहरले श्रृंगार, बाहरलियां सुगंधियां, बाहरली सजावट, मांग च पाया होया संधूर, पहने हुए गहने, कि तेरे उस अंदरले गले हुए हिस्से नू ए छुपा सकेंगे? जब तेरे तमाम गुण गल चुके हैं, रोटन हो चुके हैं, अंदर तेरी दी ए तस्वीर है तो तेरे श्रृंगार का की अर्थ? गुण गल चुके हैं, आज दे इस कीर्तन बहुत गौह दे नाल सुनना विचारना, क्योंकि गुरु बाबा जी आखते हैं कि ऐ स्त्री
ਇਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਉਸ ਫਿਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਉਸ ਫਿਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਤੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਤੇ ਸਮਝ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਗਲੇ ਪਏ ਹਨ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣੋ ਹੁਣ।

सत्य संतोख दया धर्म श्रृंगार बनावो। कहते आ श्रृंगार बनाओ पत्नी नू, जदों वो पत्नी बनती है, जदों उसका मिलन हुंदा है, जदों उसकी शादी हुंदी है तो श्रृंगारी जांदी है। कहते अकाल पुरख वाहिगुरु भी अपनी दुल्हन नू उदों ही कबूल करता है जदों पूर्ण तौर ते गुणा दे नाल श्रृंगारी पई होवे, श्रृंगारी पई होवे। पर किहड़े किहड़े श्रृंगार दे नाल, किस श्रृंगार की गल करते हैं? सत संतो दया धर्म श्रृंगार बना लो, इस श्रृंगार बना लो। ए श्रृंगार है, ए गुण है। सत का मतलब है पर उपकार देना, सेवा, किसी के काम आना। क्योंकि जदों लफ्ज दो गुरबाणी असूल है कट्ठे आन के सत संतोख, उत्थे सत का मतलब ट्रुथ नहीं है, सच नहीं है। ए असूल सत संतोख, सत का मतलब है संतोख, और सत नू जो महाराज जी ने जोड़िया उसके विच गहरा राज है। अपने प्रति जो भी पास है उस संतोख, पर देन वेले संतोख नहीं धारण कर लेना, दूसरे नू देन वेले नहीं संतोखी बन जाना, उसले वध तो वध जो हो सके वो करना है, वो देना है। पर असी अपने प्रति संतोखी नहीं है, दूसरे प्रति असी संतोखी, जिहड़ियां सानू जरूरतां हन उन्हां दे विच संतोख नहीं। वी वांट मोर एंड मोर एंड मोर, ल्यो ल्यो कर फिरे सब लोग, सारे लोग लै लवां लै लवां, बस मैनू मिल जाए, यही करते फिरते हैं। कहिंदे स्टॉप दैट, संतोख धारण करो। पर जदों परोपकार का सवाल आता है, देण का सवाल आता है, उदों संतोख ना धारण कर लो। सत संतोख दया अते अपने अंदर कंपैशन, दया, किसी का दुख देख के बर्दाश्त ना करना, किसी नू हर्ट ना करना, किसी हर्ट होए नू देख के उसनू बर्दाश्त ना करना। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਚ ਦਇਆ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦਇਆ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ, ਦਇਆ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਬਕ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮਨ ਔਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਡੀ, ਮਾਇੰਡ ਐਂਡ ਸੋਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਾਡੀ ਦੇ ਹੀ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ

अवगुण है। सो इसनों अज ही त्याग के चले जाओ और अज सुगंध कसम लाओ महाराज के चरण च बैठ के कि मैं इस अपने मंदिर दे नाल इस इंस्ट्रूमेंट दे नाल कदे भी कौड़ा नहीं बोलांगा मिठत। और जिस दिन कौड़ा बोल पाए उस दिन समझ लो निर्गुण राम गुणे वस हुए। कौड़ा बोलदिया सार अवगुण आ गया कि तुसी अफोर्ड करोगे अवगुण, क्योंकि अवगुण ने वाहगुरु नु दूर कर देना, वो अवगुणा तो दूर हुंदा है। दूसरी गल आखी है मिठत नीवी, वो है निम्रता, नीवे बनना, नीवे बनना, किसे तो अपने आप नु सुपीरियर ना समझना, ये नहीं समझना कि दूसरे मेरे तो किसी भी तरह मेरे तो कम हैं, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, ये आदतां हन ये स्वभाव हन पहला ये तारण करने हैं। अज असी भगती दी ग्राउंड शुरू कर रहे हैं कि भगती करनी किवें, मिठत नीवी नानका गुण चंगियाईयां तत, निम्रता सुपीरियर अपने आप नूं किसे तो ना समझना ते अपने आप तो किसे नूं इनफीरियर भी ना समझना, ये गुण। एक होर साडे च अवगुण है, उस अवगुण नूं भी दूर करना है, वो है सब सलाह है आपको, हर बंदा अपने आप नूं सलाउंदा है, अपने आप दी आप ही प्रेज करदा है, हाउ अगली इज दैट। ये अवगुण है, कदे अपने आप नूं सलाहो ना ते दूसरे नूं निंदो ना। दूसरे नूं निंदते ही इस करके हाँ क्योंकि इंटेंशन दे विच असीं अपने आप नूं प्रूव करना चाहते हाँ कि आई एम बैटर देन दैट। सब सलाह है आपको वडो वडेरी हो, सारे अपने आप नूं सलाहंदे हैं, जस्टिफाई करते हैं, अपने आप नूं ना सलाहो। जे अपने आप नूं सलाहण लग गए तो फिर अपने अवगुण नहीं तुसीं देख सकोगे, अपने अवगुण नहीं देख सकोगे। तमाम किस्म दे अवगुणा उत्ते नजर मारनी है। महाराज जी आखते हैं ऊंचा नहीं कहना मन में रहना है, बहुता ज्यादा बोलना नहीं है घट बोलना है, यह भी गुण है। जे थोड़ा जा ज्ञान आ गया तो उस ज्ञान दे नाल जिन्हां दे पास बेचारे पास घट है उसनू ढा नहीं लेना। If you are master of the language, then you do not use your language to conquer others. किसी भी तरह ज्यादा नहीं बोलना है किसी भी फील्ड में। कहंदे सब तो बड़ा एक गुण है ऊंचा नहीं कहना। जे को वाहिगुरु ने शक्ति दिती है, कोई ताकत दिती है, कोई सिफत दिती है, कहते हैं उसनु जरना है अपने अंदर ही अंदर रखना है, उसनु जाहिर नहीं होने देना, ऊंचा नहीं कहना मन में रहना, आपे जाने जाना। भक्तां की चाल निराली, चालन निराली भक्तां केरी, विखम मार्ग चलना लव लोभ अहंकार तज तृष्णा, बहुत नहीं बोलना, ज्यादा नहीं बोलना, घट बोलन की आदत बनानी है। जे कितने पांच सात बंदे की कन्वर्सेशन भी चल रही है तो उत्थे जरूरी नहीं कि अपनी ओपिनियन इंसल्ट करनी ही करनी है, देयर इज नो नीड फॉर दैट। ऊंचा नहीं कहना मन में रहना आपे जाने जाने, बहुत नहीं बोलना, यह तमाम किस्म के गुण हैं। खान पीन उत्ते भी गल आती है, खान पीन उत्ते भी गल आती है, कहते हैं सेव की संतोखी जिनी सचो सच त्याया, उन्हीं मंदे पैर न रखियो कर सुकृत धर्म कमाया, उन्हीं दुनिया तोड़े बंधना अन्न पानी थोड़ा खा, अन्न पानी थोड़ा खा, थोड़ा खान तो भाव भुखे रहना नहीं, थोड़ा खान तो भाव यह है कि जो असी अननेसेसरी अपनी बॉडी

तो हम तक की सुने हैं अपनी मन भी मत में त्याग दे। अगर अपने आप में सोचते कुछ कहने हो तो वो गलत कहानी है। फिर महाराज जी क्यों करिए, क्यों करिए? तो कहेंगे गुरु की मत तू लेह ए आने। हम साथ सुन गौर न सुनो, इसे शब्द महाराज जी ने वर्त्या है ए आने। तो आने शब्द जरा निके निके बच्चे बैठे ने इन्होंने वर्ते। सुखमी साहब जो महाराज जी ने उचारी सी तो सुखमी साहब के लफज आने जरा उन्होंने निके जो है न्याणिया जो 5-7 साल की उम्र में सी ये शब्द उन्होंने लिखा से उन्होंने बेचारे भोले पालन के समझ नहीं सी आने। तो सियाने फिर आने कौन हैं? सियाने वो हैं जिन्हों के पास सियाणक नहीं है पर उन्होंने वहम है सियाणक। जो ग्रोन न्याणे हैं ना उन्होंने आता है ग्रोन न्याणे। जो ग्रो हो गए हैं लेकिन हम हाले न्याणे ही अब मनवे भी नहीं हम कि अभी हाले न्याणे हैं। वो तो कोई कोई गुरसिख अजिहा होता है जो आखे हम बार क्यों गुरसिता हैं जो मत समझाए। तू गुरु पिता है अभी असी बालक हैं हाले। लेकिन कौन कौन प्यार है कि अभी बालक हैं? जब इंसान कहता मैं तुम्हें बच्चा समझ दो मैंने न्याणा समझ दो मेरे तौले आ गए हम तो मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश कर दो। इस तरह के तौलिया के नाल अकल आती है और तो कुछ संबंध ही नहीं उसके नाल। तो साथ संगत जी हूँ तक आप जी ने यह सुनिया है गुरु बाबा जी का सुनेहा कि अपनी सारी मत अपनी सारी सियाणप क्योंकि साढ़े पास नहीं है छड़ दो। तो कहते हैं गुरु की मत तू ले आने आने गुरु की मत लै क्योंकि भगत बिना बहुत डूबे सियाने बहुत बड़े बड़े सियाने जोड़े हैं वो गुरु की मत तो बिना भगती नहीं आती। बिना भगती तो बहुत व्डे व्डे सियाने जो हम वो अपनी सियाणप के डुब जाते हैं अपनी सियाणप के डुब जाते हैं। इस करके प्रेम नाल आओ इस पंक्ति लगाओ उपरंत अगे चल रहे हैं।

0: Ouais, c'est une place comme ça. Ouais, c'est une place.
1: You are listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.
2: Kartapur Nirvair Akal Murat Ayuni Sev Hangur Prasad Yat Aad Sat Yugaad Sat Hevi Sat नानक कोशी भी सच चक्र के निर्वर निजात हर पात नहीं ले दूर पर अंगे अरेरी पी उनका अनुस्तत है अचाल मूर्तन भव प्रकाश अमित पूज के हिंजे पूज इंद्र इंद्राण शाहु शाहान गणिजे फिर भवन में ही सुरनारायासुर नीत नीत मंदिर कह तब सर्वनाम कथे कवन कर्म नाम वर्ण समझ सतगुरु आयु शरण तुहारी मिले सुख नाम हर शोभा चिंता लाए हमारी और न सूझे दूजी ठार आर प्रयु तो द्वारी लिखा छोड़िया लिखा छुटा हम निर्गुण ले हो वारी सर्वक्षण सदा मेरवाना सबना भी आधारी नानक दास संत पाछा करियु राख लियु ए बारी सतगुर हुई दयाल ता श्रद्धा पूरिया सतगुर हुई दयाल ना कम हो चूरिया सतगुर हुई दयाल ता दुख न जानिया सतगुर हुई दयाल ता हर रंग मानिया सतगुर हुई दयाल ता जमका डर के हा सतगुर हुई दयाल ता सदी सुख दयाल सतगुर हुई दयाल ता नवनिध पाइया सत

अपने पद करें प्रतपाला, अदरा तेरी हड़ियाई नित नानक नाम तिहाई, अदरा तेरी हड़ियाई नित नानक नाम तिहाई। भाई का रसा

आख्या फरमान देन। आम करके दुनिया कन रस विच उलझी है, ए आत्म रस दी खुराक है, आत्म रस जै जाने ही सो है खालस दी।